0: KZSU Stanford.
1: This is KZSU Stanford 90.1 FM. Stay tuned for Chai Time.
2: KZSU Zootopia is our robot-curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past two decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
3: चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक कटक करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, झूम रहे हैं मानो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। नमस्कार दोस्तों, मेरी तरह यदि आप भी हिंदी कविताओं पर बड़े हुए हैं और इन्हें जोर जोर से पढ़ने में और सुनने में आपको आनंद आता है, यदि आप हिंदी भाषा से प्यार करते हैं और हिंदी के शब्द सीधे आपके दिल तक जाते हैं, तो आज के मेहमान से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप हिंदी कविता पर बड़े नहीं भी हुए हैं, तो ये मेरा वादा है कि इनसे मिलकर, इनकी बातें सुनकर और इनके चैनल को सुनकर आपको हिंदी से और हिंदी कविता से प्यार हो जाएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान को। बहुत बहुत नमस्कार आपका। ये है KZSU स्टैनफोर्ड 90.1 FM। मैं प्रांजलि और मैं स्वागत करती हूँ मनीष गुप्ता का। मनीष, कैसे हैं आप?
4: मैं बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया आपके रेडियो पे बुलाने के लिए।
3: तो मनीष के लिए मैं क्या कहूँ। मनीष इज द मैन बिहाइंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी कल्चरल प्रोजेक्ट हिंदी कविता। He has successfully revived an interest in Hindi poetry among both elites and common people in India, particularly youth. In the last few years, Hindi Kavita has become a household name among poetry lovers in India, and Manish has also added Urdu Studio and Punjabi Studio to this project. This glorious project has touched Hindi language lovers across the globe and has spread as a huge social movement. Manish Gupta is a filmmaker, columnist, painter, poet, cultural philanthropist, and much more. But what fascinates me about him is that he has invested all his money, my passion, and entire life into Hindi Urdu Studio projects. Manish, matlab itna successful New York ka career, aur fir aisi Hindi kavita ki taraf ruk. Mujhe aap bataiye shuruati daur ke bare mein, aur matlab Hindi kavita ye kaise?
4: Pranjali, aapki tarah bachpan mein India mein bada hua. और मध्य प्रदेश में होने की वजह से हिंदी साहित्य तो जीवन का एक हिस्सा रहा ही। फिर उसके बाद में जैसा सबके साथ में उस जमाने में मेरे साथ भी हुआ, जैसा होता आया कि हमें अंग्रेजी बोलने वाले लोग बड़े लगता था कि भाई ये लोग थोड़ा मेन स्ट्रीम लोग हैं, हम हिंदी बोलने वाले थोड़े से कहीं पीछे हैं इनसे। और छोटे शहर में बड़ा होने के बाद में पढ़ाई पूरी बड़े शहरों में होती है, फिर यूएस आना होता है। तो 1998 में मैं अमेरिका आ गया था। यूएस में मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने मेडिटेशन ग्रुप्स चलाए, मैंने आईटी में भी काम किया, फिर नाइट क्लब चलाया और आर्ट रिलेटेड चीजें की, पेंटिंग्स के एग्जीबिशन वगैरह की। तो काफी तरह के बैरिड लोगों से मिलना हुआ, और खासतौर से न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क तो वैसे भी बहुत ज्यादा ऐसे कल्चरल मेल्टिंग पॉट, तो वहां पे ये होता था कि यार हम सब अपनी भाषाओं की तो कदर करते हैं, तुम लोग हिंदुस्तानी, तुम लोग हिंदी की कदर नहीं करते। हम जब भी जाते हैं हिंदुस्तान घूमने, हम हिंदी में बात करने की कोशिश करें भी तो सब लोग जवाब देते हैं अंग्रेजी, दे पाए ना दे पाए अंग्रेजी में जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली बात तो थी। और दूसरा, साहित्य जब भी यहाँ पे ढूंढा, जैसे अब आपने चारू चंद्र की चंचल किरणें कहा, तो इंटरनेट आ चुका था और ज्यादा आ रहा था। ऑनलाइन कुछ बहुत इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशंस नहीं मिल रहे। अंग्रेजी की कोई चीज है तो वो आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस और बहुत कुछ मिलता था। हिंदी में अगर कुछ मिलता भी था तो आप सिर्फ इसलिए पसंद करते थे, प्रोडक्शन वैल्यू के लिए नहीं, वो आपको बहुत ज्यादा अभिभूत नहीं करता था, एंथ्रॉल नहीं करता था। चलो ठीक है, एटलीस्ट यू आर गोइंग टू द बेसिक समथिंग। सो प्रेजेंटेशन वॉज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड। कभी कभी लगता था कि यार कभी मेरा बस चले और मैं कुछ प्रेजेंटेशन करूं, बनाऊं कुछ कभी, और बड़े बड़े लोग आए, अच्छे एक्टर्स आए, पता नहीं मतलब जो अभिनेता अभिनय सीख के आ रहे हैं उनकी डिलीवरी में कभी सुनने का मौका मिले तो क्या ही खूब होगा। और तो ये भी कहीं बैक ऑफ माइंड था, लेकिन वो आईटी इंडस्ट्री थी। बाद में इंडिया जाना हुआ, इंडिया में मैंने कुछ टीवी सीरीज वगैरह प्रोड्यूस की, बॉम्बे में हर बंदा आपसे अंग्रेजी में बात करता है, और वही यहां से जाने के बाद में, न्यूयॉर्क में रहने के बाद में, व्हेन आई वाज लकी के न्यूयॉर्कर में लिखने वाले, द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने वाले लोगों के साथ में थोड़ा सा आई कुड बी ए फ्लाई ऑन द वॉल इफ आई वाज नॉट इन टच विद देम. सो आई न्यू कि ये लोग भाषा को लेके कितने सतर्क हैं, वो कैसे अखबारों में भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो वाली भाषा कहीं ना कहीं प्रतिध्वनित होगी फिर आगे चल के लोगों के बीच में. उन्हें मालूम है कि भाषा में कौन सा फैशन लेके आना है, कौन सा बढ़ाना है, कौन सा क्या करना है. तो ये बड़ा क्रूड लगता है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि यहाँ पे भाषा पे काम कर रहे हैं लोग. हिंदुस्तान में तो लाइक अगर बागीचा हो तो वो जंगली तरह से जो भी बढ़ गया, जो बढ़ा जा रहा है, कुछ काट छाट ये वो कुछ नहीं हो रही, उसका ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रहा. तो वो देखने में बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि भाषा इज द एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड. जितनी जितना आप भाषा की जितनी गहरी आपके पकड़ है, जितने दूर तक आप भाषा के साथ में जा सकते हैं, उतना आपका इमेजिनेशन जाएगा.
3: जी, आप सोचते हैं क्योंकि आपको भाषा आती है, जितनी गहरी भाषा उतनी गहरी सोच.
4: जी,
3: लेकिन अभी मैं एक और चीज सोच रही थी कि आपके साथ इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं ना, जैसे पंडित बिरजू महाराज हैं, गुंदेचा भाई हैं, विनोद दुआ, रवीश कुमार, नसरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी, सौरव शुक्ला, इम्तियाज अली, स्वरा भास्कर, मतलब एंडलेस लिस्ट है ना. और मुझे याद आता है कि वो जो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. तो अब तो कारवां है, आप आज हमें इतनी सारी चीजें बता रहे हैं और आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि शुरुआत बहुत छोटी, बहुत सादी, बहुत अकेली होती है ना. तो मैं मतलब ये जानना चाह रही थी कि वो शुरुआती दौर जो था जिसमें आप अकेले थे, आपका ये पैशन था और ये इतनी बड़ी एक चीज दिख रही थी, और आज इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी कल्चरल प्रोजेक्ट का नाम मिला. तो ये जो है, जहां लोग बकेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, पोर्शे खरीद रहे हैं, वहां आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के ये पोएट्री प्रोजेक्ट बनाया. तो मुझे एकदम वो शुरुआती जो दौर है ना, वो क्या हुआ, कैसे हुआ और आप कैसे आगे बढ़े, ये मुझे बहुत उत्सुकता है और अभी नहीं, खूब साल से पूछना था, तो वो मुझे जरूर बताइए.
4: ठीक है, इसका जवाब भी यही रहेगा कि मेरे पास में शायद पैशन के साथ साथ पैशन शायद दूसरे नंबर पे आता है, फ्रस्ट्रेशन पहले आ जाता है. तो इन चीजों से मैं वाकई फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ. फिर मैं लोगों से जब भी मिलता हूँ, भले ही आप बैठ के बड़े सोशल सर्कल में हैं या कहीं पे भी हैं, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, तो वहां पे बातें फिर निकलती हैं, तो धीरे से मैं खींच के यहीं ले जाता हूँ कि यार हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी भाषा कहाँ है, हमारी भाषा के एम्बेसडर्स कहाँ है. तो फिर चूंकि मैंने एक दो फिल्म्स पहले बनाई थी, टेलीविजन प्रोड्यूस किया था, तो फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत दखल था, और जब इन लोगों से बात होती थी और कई बार उनके सामने बातचीत में ये वाली बातें निकल के आई, और फिर ये वाला फ्रस्ट्रेशन निकल के आया कि भाई हम लोग अपनी भाषाओं में कुछ कर सकते हैं, उनका ये था कि भाई कौन करेगा. तो मैंने कहा आप करें, मैं करता हूं. हिंदी के लिए खड़ा कौन होगा, सरकार होगी. वो तो सरकार तो अपने ग्रांट व्रांट दे देती है, 8,000 करोड़ रुपए हर साल हिंदुस्तान में वो भाषाओं के विकास पे खर्च हो रहे हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता. वो सारी हमारी जितनी भी भाषाएं हमारे संविधान में है, उनके ऊपर ये पैसा खर्च होता है. और फिर तो असल फ्रस्ट्रेशन यही था, चाहे आप मनोज वाजपेयी से बात करें कि भाई लोग नहीं आ रहे हैं, तो उनका ये था कि तो क्या करोगे. कई सालों तक ये डिस्कशन चलता रहा, तो भाई करोगे क्या, जाओ अभी टीवी चैनल खोल लो. तुम टीवी चैनल खोलोगे तो बहुत सारे लोग देखने लगेंगे, वहां पे लगा देना. लेकिन वो टीवी चैनल खोलना संभव भी नहीं था एक आदमी के लिए, उसके लिए जो रिसोर्सेज रहते हैं वो भी नहीं थे, और हिंदी के लिए कोई ऐसे एडवर्टाइजर्स भी नहीं आएंगे. तो ऐसा प्लान ना बना के, और इंटरनेट आ ही रहा था तब, ये मुंबई प्रेस क्लब की बात है, विष्णु खरे भी थे और बहुत सारे वहां पे मुंबई के जो हिंदी भाषा के अखबारों के संपादक और कुछ साहित्यकार भी. तो तब ऐसी बातें बार बार आती थी, मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ आप लोग ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, आप लोग कविताओं से हम शुरुआत करते हैं, छोटी मोटी कविताएं आप पढ़ दें, हम उनके वीडियोस लेके जाते हैं और वो शायद वायरल होने के ज्यादा चांसेस होंगे. अगर फैशनेबल वीडियोस हो गए, अगर वो वीडियोस कूल किसी को लगेंगे, तो वो उस तरफ उसका आकर्षण होना संभव है.
3: बिल्कुल,
4: तो पहला जवाब तो यह है कि भाई ये ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने हैं कि फिल्म इंडस्ट्री किसी की होती है, फिल्म इंडस्ट्री तो किसी की नहीं होती, किसी की सगी नहीं होती, अपने भाई के पास नहीं जाते, भाई की मदद नहीं करते, वो चले जाए तुम जाओगे कि भाई मदद कर दो, कर देंगे। तो अब मेरा ये था कि भाई जाके पूछ लेते हैं, मना कर देंगे अगर मदद नहीं करते हैं तो फिर ये हुआ कि उसके पहले ये हो रहा था कि मैंने कहा सर आप आए, मंगलेश डबराल हैं जो अब नहीं रहे रिसेंटली,
3: हाल ही में उनका,
4: हाँ हाल ही में उनका देहांत हुआ, अनफॉर्चुनेट न्यूज, अशोक वाजपेयी और फिर विष्णु खरे, इस तरह के लोगों से मैंने कहा सर आप लोग आ जाएं हाँ और आप लोगों को हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो उनका ये था देखेगा कौन, मैंने कहा सर देखे कोई ना, पोस्टेरिटी के लिए आजकल यूट्यूब पे हम छोड़ सकते हैं, हमेशा पड़ा रहेगा, और कभी कोई स्कॉलर्स काम करना चाहेंगे तो वो आपसे रूबरू हो पाएंगे आपके जाने के 100 साल बाद 200 साल बाद, तो वो काम आ जाएगा आप, और मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से कर रहा हूँ, कोई देखे ना देखे हमको आपको सुख मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो ये वीडियोस बनाना शुरू किया था और एक साल तक तो बस यही है कि बुजुर्ग लोग बैठ के पता नहीं कैसी अनर्गल

0: कहा है कि यार तुम कविता पढ़वा रहे हो, कभी मुझसे पढ़वाओ। तो मैंने कहा सर नेकी और पूछ पूछ, वो थे राजेंद्र गुप्ता,
1: अच्छा
0: वो NSD के थे, और तो उन्होंने वो बहुत बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक कविता आप अगर सुनना चाहें उनकी है हमारे YouTube चैनल पे, जो उन्होंने सबसे पहले पढ़ी थी,
1: अच्छा
0: वो आपके दर्शकों ने अगर नहीं सुनी तो उन्हें सुननी चाहिए। वो है मुक्तिबोध की कविता है भूल गलती। शुरू होती है, भूल गलती आज बैठी है जरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के।
2: भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, और खड़ी है सर झुकाए सब कतारें बेजुबान बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। सामने सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वो एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वो कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी, अल गजाली इब्ने सिन्ना अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहनशाह शाही धाक का अजब सिर्फ सन्नाटा। लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हां खूंखार आली जहा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वो घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में। इतने में हम ही में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बाहथियार बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुहे पन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दरियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया, महसूस होता है कि ये बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा।
0: तो उन्होंने पढ़ी कविताएं, तो मैंने उनसे फिर बातचीत लंबी होती है, वीडियोस तो छोटे से बनते हैं, तो बातचीत में फिर ये था कि कविता कैसे पहुंची उनके पास में। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जब से अपने स्टूडेंट डेज से, जब मैं NSD में था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दिल्ली में, जो है हमारे देश का फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग एक्टिंग, तो वहां पे हम

0: को अनिवार्य सा कर दिया था जो हमारे डायरेक्टर थे कि कविता कविता पाठ होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर तो और लोग भी होंगे जिनके अंदर कविता होगी, तो बोलते हाँ होना तो चाहिए, ढूंढो। और फिर वहां से लोगों से जब बातचीत करनी शुरू हुई तो शुरू में तो मतलब सभी ने कहा कि हाँ ठीक है मैं निकालता हूँ टाइम, हिंदी पढ़ेंगे यार मजा आएगा। तो दरअसल ये भी हुआ उनके लिए, ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो रहा था जहां पे वो दिख पा रहे थे जो वो दिखना चाहते थे। तो लेकिन ये लोग भी हमारे आपके जैसे इंसान हैं, पढ़ने लिखने में शौक रखते हैं और लिटरेरी शौक है, वो तो उनके किसी काम नहीं आ पा रहा था। तो फिर वो चीजें कम से कम एनएसडी से निकलने वाले लोग, मनोज वाजपेयी हों, पीयूष मिश्रा हों, इन सभी के अंदर रही थी। सुरेखा सीकरी के साथ में कुछ वीडियोस ऐसे लेजेंडरी से बन गए हैं। उन्हें उनसे भी जब पता किया कि भाई आप लोगों को कविता पढ़नी आती है, बड़े अच्छे से आप पढ़ते हैं, लेकिन वो कहाँ से सीखी, किसने सिखाई? तो रघुवीर सहाय एनएसडी में जाते थे, मतलब वो दिन थे हमारे कि आप एक राइटर को बुलाते थे। रघुवीर सहाय वो इंसान है जो बहुत जोर जोर से अपनी आवाज उठाते रहे कि भाई तुम कवि लोग हो, लिख तो लेते हो, पढ़ा मत करो, क्योंकि तुम्हें पढ़नी नहीं आती, तुम खराब कर देते हो। तो इनका ये था, उन्हें लगता था कि भाई प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा लोगों को वो कविता बदल पाएगी, ज्यादा लोगों पे असर डाल पाएगी। तो हमारा ये रहा शुरू से कि हम प्रेजेंटेशन पे थोड़ी सी मेहनत करते थे
1: जी।
0: और जो बहुत सारे काम किए जो पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हाँ वो काम आ गए। जैसे एक बड़ी मजेदार सी बात, वो मेकअप स्वरा भास्कर से मिलने गए तो स्वरा भास्कर के साथ में शूट करना था, उसने कहा मैं पाश पढ़ूंगी, पाश मेरे साथ मेरे जीवन का हिस्सा रहे हैं। तुमने कहा ठीक है पाश पढ़ते हैं। तो अब उसने अपना पूरा मेकअप वेकअप के साथ में सुबह सुबह वो तैयार थी। तो हमारा ये था कि हे भगवान ये मेकअप के मतलब वो तो दैट्स अ बेसिक नीड, एक्ट्रेस है तो मेकअप चाहिए और कैमरे के सामने आने के लिए सब लोग अच्छा खासा एक अच्छी सी परत रहती है मेकअप की, उसके बिना नहीं आते। तो मैंने कहा भाई इसके परे कविता को लेके, कविता मेकअप को मतलब क्रॉस नहीं कर पा रही है, उसको भीम नहीं पा रही है, वो मेकअप में कहीं अटक जा रही है, तुम्हारी जो आंखों में सच्चाई है वो कहीं फंस रही है। बोलती अच्छा मुंह धो के आ जाऊं? तो मैंने कहा हाँ आ जाओ। तो उसने कहा थोड़ा कम कर दूं कि पूरे ही धो लो? मैंने कहा पूरे ही धो लो, तो अगर आप वीडियोस होते यहाँ पे या उस वीडियो फॉर्मेट में तो आप देख सकते हैं उसकी आंखों के नीचे काला भी दिखता है। दैट काइंड ऑफ चेंज एवरीथिंग, मतलब वहां पे लेकिन सच्चाई दिखती है। तो जो भी कविता पढ़ रहे हैं, हमने ये भी कहा कि भले जो बड़े एक्टर्स भी हैं, एक्टिंग करनी मुश्किल है। जैसे डस्टिन हॉफमैन कहते हैं ना कि व्हाई एक्ट, जस्ट बी द कैरेक्टर। वैसे ही हमने देखा कि जिन एक्टर्स के पास में जो कवि और जो कविताएं हमेशा से थीं, उनको हमने पकड़ने की कोशिश की कि रादर देन एक्टिंग इट आउट, मतलब जिसके साथ वो जिए हैं, जिसके साथ में वो सोए हैं, जिसके साथ में वो उनके उनके जीवन का जो हिस्सा रही है, वैसी कविताएं ज्यादा काम आई। और हमने फिर यही कोशिश की कि भाई जो उनके करीब विषय रहे हैं और जो कवि रहे हैं, जो कविताएं रही हैं, उन्हीं को लिया जाए।
1: बिल्कुल। और आपने स्वरा की बात की तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी सोच थी ना वो सही है। एज अ कंज्यूमर, एज अ यूजर, एज अ श्रोता मैं आपको बता रही हूँ कि आज सुबह जब आपसे बात करनी थी मुझे सबसे पहला ख्याल यही आया कि अरे आंखों के नीचे काला दिखेगा सवेरे सवेरे, क्योंकि मैं रेडियो पर्सन हूँ, मुझे बहुत वीडियो की नहीं ऑडियो की आदत है। लेकिन मैं स्वरा की कविता बैकग्राउंड में सुन रही थी और मैंने पलट कर देखा तो स्वरा बिल्कुल बिना मेकअप के सादी सी, और इतना अच्छा लग रहा था उनकी आवाज को सुनना और उस कविता में डूबना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आवाज होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स। और वो जो कनेक्ट कर रही थी स्वरा उस कविता के साथ वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो ऐसा करते हैं कि हम हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को स्वरा की वो कविता दिखा देते हैं, सुना देते हैं, और बातों का सिलसिला तो चलेगा ही। लेकिन सच्ची ये बात आपने जो कही वो मुझे इतनी अच्छी लगी तो सुन ही लेते हैं वो कविता। ठीक है पाश की
2: जी। मैं अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, ईख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से चूती ओस और बाटी में चोए दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था, और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों ने तैरना था, और मेरी छाती के बालों की नरम शाल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और जिंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना, और यदि मैं लिख भी लेता शगनों से भरी वो कविता तो उसे वैसे ही दम तोड़ देना था तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निसत्व हो गई है जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ाए हैं, और अब हर कविता से पहले हथियारों से युद्ध करना जरूरी हो गया है।
1: तो मनीष, आपने बात की हिंदी को कूल बनाने की, और मैं जितने लोगों को मैंने सुना है जो हिंदी कविता की बात करते हैं या मनीष गुप्ता को जानते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल यंग जनरेशन जो यहाँ की सिलिकॉन वैली की कंपनीज में जो काम करते हैं, बीच बीच में सैन फ्रांसिस्को के कैफे में इकट्ठे होते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं सुनाते हैं, उन सबको हिंदी कविता पता है, मनीष गुप्ता पता है, और सारे पुराने नाम अब उनको वापस मिल रहे हैं क्योंकि वो भारत छोड़ के आते हैं ना, और वहां जो उन्होंने देखा था, मिला था, अब वो यहाँ भी खोज रहे हैं। तो आपकी कविताएं बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ के यंग यूथ का, यूनिवर्सिटीज में मैं सुनाती हूँ, मैंने लोगों को सुनते देखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो यूथ को कनेक्ट करने की बात है, उनके लिए वो कूल लगे ये बात है, ये शायद आपके लिए सबसे बड़ा जरिया बना आगे बढ़ने का और इतने सारे लोगों से जुड़ने का, राइट? तो इंडिया में भी क्या यूथ ऐसा कनेक्ट कर रहा है और वहां भी जुड़ रहे हैं लोग?
0: जी, दरअसल इस बारे में भी मेरा इंडस्ट्री के साथ में थोड़ा मतभेद रहा है, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो इंडिया से हो रही है, वो जो टेलीविजन पे इतने सीरियल्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोगों का कहना और मानना है, उन लोगों का भी जो टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, कि हमारा काम थोड़ा सा मीडिया करना है। क्यों? तो उसका जवाब आता है, क्योंकि देश ये चाहता है, और मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जहीन होते हैं, अगर उन्हें ठीक एक्सपोजर मिलेगा तो वो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और असल चीज में दिलचस्पी लेते हैं। तो हमारा शुरू से एक तो ये रहा कि हम और हिंद, अच्छा दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे चलते चलते बता दूं कि जब मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई हो क्या रहा है हिंदी के नाम पे, हिंदी क्यों नहीं आ पा रही, तो मोटे तौर पे दूर से अगर बैठ के देखते हैं तो हमें दो चीजें देखने मिली कि एक तो हिंदी को लेके लताड़ लगाई जाती है कि यार शर्म करो बच्चों या नई जनरेशन, मतलब ये ऐसा कई जनरेशन से होता आया कि शर्म करो अपनी मातृभाषा से दूर जाते हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि लोग जवानी में और उसके थोड़े से बाद तक तो बाहर की दुनिया में रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपने रूट्स की तरफ आना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि अब उन्हें लगता है कि चलो हम शाम को भूला लौट के घर आ रहा है तो सबको ले आए, लेकिन वो लोग भी दूसरे भी बाद में आएंगे शायद, तो एक एक बहुत लताड़ के साथ में ये रहता था कि शर्म करो तुम अपनी भाषा नहीं बोलते। दूसरा ये रहता था कि इमोशनल डोज होता था कि भाई अपनी आपकी माँ को तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम अपने तो इस पे दरअसल हमने बाकायदा काम किया, मतलब मेरी थोड़ी सी मेथड शायद ऐसी है कि पहले, और मैंने बहुत सारे लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला कि हमारी सोसाइटी में चक्कर क्या चल रहा है। आपको पता चलता है कि भाई जॉब्स अंग्रेजी में है, इसलिए साइंस का एजुकेशन अंग्रेजी में ही है, हम कभी अपनी रीजनल भाषा में नहीं कर पाए, तो और हिंदुस्तान समझता रहा है अंग्रेजी बिकॉज वी वर कॉलोनाइज्ड, तो उस चक्कर में एजुकेशन जिसमें होगा और जॉब्स जिसमें होंगे वो वाली भाषा इंसान बोलेगा। आज जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिजनेस, मतलब आज जो भी बिजनेस हो रहा है वो भी अधिकतर अंग्रेजी में हो रहा है, ये चीजें चलती रही, लेकिन फिर वो जमाना था कि अमेरिकन कंपनीज, गूगल, एप्पल, ये आपको प्लेटफॉर्म्स दे रहे थे कि आप अपने फोन पे अपनी मातृभाषा में लिख सकें। अब मार्केट की वजह से, मार्केट ड्रिवन, अमेरिकन कंपनीज आर मार्केट ड्रिवन, तो वो आपको न सिर्फ हिंदी में दे रही है, वो पोलिश में भी दे रही है, वो पंजाबी में भी दे रही है, वो बांग्ला भी दे रही है, वो कन्नड़ा भी दे रही है, दे वॉन्ट टू डू इट टू ऑल द लैंग्वेजेस बिकॉज इट्स ओपन मार्केट दैट दे कैन कैप्चर। तो वैसे हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज गंवाई, ये लोग कैप्चर करते रहे। एक तो ये हो ही रहा था, ये सारे के सारी जो जब चीजें चल रही थी, तो यूथ की जब बात आई तो एक तो था कि टेक्नोलॉजी, और दूसरा ये था कि इन पे भरोसा करके, क्योंकि सारा हर जगह से जो भरोसा जा रहा है अधिकतर जगहों से वो मीडियोकर सा है। अगर हम कहीं से थोड़ा सा एक्सेल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोडक्शन वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंगल, इन टर्म्स ऑफ साउंड डिजाइनिंग, कमजोरियां हैं हमारे पास में, लेकिन फिर भी हमने, हमारा ये रहा कि हम ऐसा कुछ करें जो लोगों को ट्रेंडी लगे और जो यूथ है वो अपने आप आए। हम किसी यूथ को ये नहीं कहेंगे, हम किसी जवान लड़के को ये नहीं कहेंगे कि भाई अपनी मादरी जबान बोलो, वो क्यों बोले। हम जाके फिर ऐसी बातें करने लगे कि ठीक है भाई, अब अगर हम जैसे IITs IIMs में बहुत सारा जाना हुआ, तो हमने कहा भाई आप लड़की कैसे पढ़ाएं, आप कैफे में बैठे हैं, आप कैसे किसी से किसी को इम्प्रेस करेंगे कि वो सब छोड़ छाड़ के रात भर तुम्हारे बारे में सोचती रही। अंग्रेजी में ऐसा क्या बोल लोगे, अगर
1: जी
0: तुमको थोड़ी सी उर्दू आती है और आप कोई शेर मार दो, किसी मौजू शेर आपने मार दिया कि भाई वल्लार नाजुकी कि चमेली का एक फूल, सर पे जो रख दिया तो कमर तक लचक गई। अब हो सकता है वो फिर दूसरे दिन तुम्हारे साथ कॉफी पीने जाए। सो हमारा, हमने इसको ये बताने की कोशिश की कि भाई अंग्रेजी इज नेसेसरी, वो आप सीख लें, आप उसमें जॉब कर लें, लेकिन जो आप अपने भाषा के लज्जत है शायद अपनी मातृभाषा में ज्यादा ले सकें, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आज भी है, अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मरा नहीं है। इसका हमने फायदा उठाया जाए, क्या फायदा उठा सकते हैं, तो हमने हमने जितना काम करना चाहते हैं उसका बहुत छोटा सा प्रतिशत कर पाए हैं, लेकिन यही रहा, हमने दिखाने की कोशिश की लोगों को कि भाई देखो इस तरह का काम संभव है। आज आप जो जिसको आप क्लिष्ट कविता कह के छोड़ के चले गए थे, वो फैशन स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो अलीट लोगों को, वो लोगों को अलीट भी लग सकता है,
1: जी
0: वैसा दरअसल हुआ। सो
1: जी
0: जो फैशनेबल तबका था बड़े शहरों का अंग्रेजी बोलने वाला,
1: जी
0: उन लोगों ने अपनी मातृभाषा में और लज्जत ढूंढनी शुरू की, उन्होंने उसकी वो कितनी हसीन जबान है वो ढूंढना शुरू किया, उसका प्रयोग करना शुरू किया, तो उससे जो अंतर पड़ा वो फिर धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होके आया।
1: जी और हुआ क्या ना, पहले एक जमाने में अंग्रेजी बोलना बड़ा खास था, पर अब ऐसा हो गया ना कि अंग्रेजी ही नॉर्मल, इंग्लिश बोल रहे हैं तो अब लगता है अरे क्या है, वो तो सभी बोल रहे हैं। अब कोई हिंदी अच्छी बोलता है ना तो हमको बहुत खास लगता है, अरे वाह कितना अच्छा हिंदी बोल रहा है। तो आई थिंक हम जो आ रहे हैं ना वापस जड़ों की तरफ, भाषा की तरफ, ये एक बहुत नई और अच्छी शुरुआत है। और आप बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की और भाषा की और यूथ की, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार छोटा सा ब्रेक लेकर हम सुनते हैं मनोज बाजपेयी को, क्योंकि मैंने जितने भी यंग लोगों को देखा और सुना है उनके लिए वो फेवरेट है रश्मि रथी का, जो आपका हिंदी कविता में जो यूट्यूब में क्लिप है, तो थोड़ा सा सुन लें।
0: जी, मनोज के तो जीवन का, जैसे उसने कहा भी है, बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मतलब वो कह रहा था कि मैं इसी को लेके रोता था, इसी को लेके सोता था, इसी को लेके चिल्लाता था और इसी को लेके इतराता था।
1: जी, और ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। तो हमारे पोएट्री ग्रुप में भी एक हमारे दोस्त है, मतलब मेरे दोस्त है पर बहुत ही छोटे उम्र में, वो शशांक नाम है उनका, वो भी जोर जोर से ऐसे रश्मि रथी जब सुनते हैं ना, हम सब सुनाते हैं जब वो, तो हम सुनते रह जाते हैं। तो मैं देख रही थी कि हर किसी के साथ ये एक कनेक्शन है, रश्मि रथी से है, कविताओं से है। तो चलिए हम सुनते हैं मनोज वाजपेयी को।
3: वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल, अमृत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सुंद मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, संजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाथ का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
1: तो मनीष, आपने प्रेजेंटेशन की बात की, तो सच्ची कविताएं हम पढ़ते हैं, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जोर मतलब जोर जोर से कविताएं कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वो स्क्रीन पर देखते हैं, और एक अच्छा खासा प्रेजेंटेशन हो, आवाज हो, एक सेलिब्रिटी है, तो एक अलग उसका माहौल बनता है। तो मुझे जानना था कि ये जो चार लाइन, पांच लाइन, आठ लाइन है, वो आपके यूट्यूब पर जाकर मैं देखती हूँ, तो वो ज्यादा गहरी, ज्यादा अच्छी है, और ऐसे माहौल बन जाता है, मतलब अकेले भी हैं तो आपकी क्लिप देख के लगता है अरे वाह, सबके साथ बैठकर कविता का आनंद ले रहे हैं। तो मतलब कैसे, हाउ डज इट बिकम लाइक, व्हाट आपकी आइडियाज होती हैं, क्रिएटिविटी होती है पीछे की, वो पेंटिंग्स और वो जो लिखा होता है ना, उज्जवल नवल धवल, यानी मैं तो ऐसे मेस्मराइज हो जाती हूँ। तो मुझे बताइए कि एक जो कविता आप लेते हैं, तो उसके पीछे जब वो जैसे बन के आती है, तो उसके पीछे क्या क्या मेहनत है, क्या क्या काम होता है, और कैसे वो बनता है?
0: अच्छा, इसका जवाब देने के साथ में मैं एक और चीज बताता हूँ। शुरू में हम लोग जो करते थे, हमारा ये मकसद था कि एक अकेला व्यक्ति इसे ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव एंटरप्राइज टू हैंडल, और ये था कि भाई मैं बंद करके भाग जाऊंगा। तो जाने के पहले ये एक काम हम लोगों ने किया कि जो भी एंटिटीज हैं, जितने बड़े बड़े हिंदी के अखबार हैं, जो बड़े पोर्टल्स हैं, जो बड़ी बड़े कंपनीज हैं, हमने वी ट्राइड टेलिंग एवरीबॉडी कि भाई इस तरह का काम कर लो, इसमें ग्लैमर है, इसमें आप लोग पैसा भी कमा सकते हो, और इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो हमने आबो हवा बदलने की कोशिश की। अंग्रेजी वैसे भी हमने एक कैंपेन की थी उसके पहले कि इंग्लिश इज द न्यू नॉर्मल, वो दबी दबी सी कैंपेन ऑनलाइन, कई चीजें जो वायरल हो जाती हैं, तो इंग्लिश इज द न्यू नॉर्मल, एक उस कैंपेन की जरूरत इस तरह से पड़ी थी कि जो अंग्रेजी में आप बोलें, बिल्कुल बोलें, हमने अंग्रेजी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ में अपनी मादरी जबान को ना जाने दें, वो थी कि अंग्रेजी बोल लेते हो कोई बड़ी बात नहीं है, एक वो किया। दूसरा ये किया आबोहवा बदलने के लिए कि जितने भी लोग हैं जो बना सकते हैं वीडियोस, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे वो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हों, और उसके अलावा जो बड़ी एंटरप्राइजेस हैं जो हिंदी को लेके, सरकारी एंटरप्राइजेस भी हैं, हर एक राज्य की अपनी हिंदी अकेडमी है, सेंट्रल में अलग हिंदी अकेडमी है, इस तरह की एजेंसीज भी हों, और कोई भी आके कोई इसे इसे फॉर्मल तरीके से बहुत सारे लोग करें, ये कोशिश रही। तो हम सबको ये कहते रहे कि भाई आप लोग करें, हम नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ कविताओं का पे काम कर रहे हैं, कहानियों पे काम करने की कितनी बड़ी गुंजाइश है, नाटकों पे, उपन्यासों पे बहुत कुछ है गुंजाइश, तो और उस पे कुछ आप लोग कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो काम हमारा वीडियोस बनाना नहीं, काम हमारा प्राइमरी था कि जो सक्षम लोग हैं वो वाले फोर्सेस आगे आए मार्केट के और वो लोग काम करना शुरू करें। तो वैसे एक ललन टॉप नाम का एक पोर्टल है, वो शुरू हुआ, तो उन्होंने एक कहानी, एक कविता रोज देनी शुरू की, अपने ही अखबार सामने आए, आज तक चैनल में अब वो लोग साहित्य का पे प्रोग्राम करते हैं, जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं उसमें उन्होंने साहित्य को लेके आए। वो हमारी कोशिश असली थी कि ये लोग इंस्पायर हों और इस तरह के काम करें। कई चीजें सीधे सीधे हमने कहा कई लोगों से, और सबको मार्केट चाहिए, सबको आई बॉल्स चाहिए, तो वो दिख रहा था, वो हो रहा था, और फिल्मी लोग आते हैं तो अपने आप ही चीजें बन रही थी
1: जी।
0: ये एक तरफ रहा। दूसरा, जो वीडियोस में फिर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा, अब करीब 3-4 साल हो चुके थे, तो बहुत ज्यादा फिर सभी लोग वीडियोस बनाने लगे, तो आपको थोड़ी सी तसल्ली हुई कि भाई काम कम हो, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह हर एक स्पीच में हर जगह ये कहता था कि ऐसी हिंदी कविता जैसी 2000 चैनल्स चाहिए, मतलब कम से कम 60 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, इस भाषा को बोलते हैं, और हिंदी और उर्दू मिला दी जाए तो 60 से भी, मतलब दुनिया की शायद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि हिंदी और उर्दू में फर्क नहीं के बराबर है। इस तरफ इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द हैं कुछ जो इस्तेमाल में भी नहीं आते, उसमें फारसी के कुछ शब्द हैं जो इस्तेमाल में आने वो भी मुश्किल है, और जो बीच की बोली जाने वाली भाषा है वो लगभग हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक जैसी है। और तो जब इतनी बड़ी भाषा है तो इसमें पता नहीं कितने चैनल्स हों, कितनी मैगजीन्स हों, कितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तब जाके ये भाषा आगे जाए। और इसलिए हमारा बड़ा प्रयास रहता था कि लोगों को लगे कि ये काम मुश्किल नहीं है करना, आसान है, सभी लोग करें, पब्लिशर्स करें। तो एक तो ये कोशिश रही, मुझे हमेशा से ये रहा कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हो जाएंगे देखते देखते हमारे कि जो हिंदी कविता से बेहतर काम करेंगे और ज्यादा जगह वो प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि ना हमारे पास प्रमोट करने की जगह है, ना हमारे पास अब रिसोर्सेज ज्यादा बचे हैं कि हम प्रोडक्शन वैल्यू में वो खर्च कर सकें। जैसे कभी आपको एनिमेशन चाहिए,
1: हाँ, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी और यही पूछूंगी कि आपने अलग अलग ब्रांचेस की बात की, तो हिंदी कविता से तो हम सब बहुत वाकिफ है, सुनते हैं, बहुत पॉपुलर है, पर अब आपका उर्दू स्टूडियो भी है, पंजाबी की बात हो रही है, और मैं रायपुर की हूँ, मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ी में भी आपने कुछ जिक्र किया था कि ऐसा भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है या होने वाला है
0: जी। तो ये वाली बात दरअसल दुनिया के सामने जाहिर हुई कि जो आप करते हैं उसको करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी एंटिटीज खड़ी होने लगी जिन्होंने हिंदी की तरह किया, बहुत सारी एंटिटीज खड़ी हुई जो बाकी भाषाओं में भी, मैं मेंटोर खुद ही करता रहा बहुत सारी भाषाओं के प्रोजेक्ट्स, मराठी में, पंजाबी में, बांग्ला में, गुजराती में। हमने हिंदी के नाम पे थोड़ा थोड़ा सा काम बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, इन भाषाओं में भी करने की कोशिश की थी जो हिंदी कविता के नाम से ही संचित है
1: जी।
0: अब ये लोगों ने कहा कि भाई बाकी भाषाओं में भी प्रोजेक्ट करो जो मेरे लिए संभव, हिंदी में ही जितना करना चाहता हूं नहीं है, लेकिन ये बहुत आसानी से लोगों को समझ में आ रहा था और ये वाली बात थी क्लियर कि अगर हिंदी कविता किसी कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उसकी देख तो पीछे से बहुत सारे दूसरे फोर्सेस भी आ जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं जो उस पर काम करने लगते हैं। तो एक तो छत्तीसगढ़ स्टूडियो शुरू करने के पीछे ये था कि छत्तीसगढ़ में भी खासी लोकप्रिय हिंदी कविताएं थी, जब उन्हें पता चला कि भाई छत्तीसगढ़ स्टूडियो करना चाहते हैं तो वहाँ के सभी लोग, एक अनुज तिवारी हैं वहाँ जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, एन अमेजिंग मैन, वो कबीर पे और बहुत सारे, मतलब उनकी दिलचस्पी सिंगिंग में भी है, प्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब वो सही मायने में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत फेमस इंसान भी हैं। तो उनके साथ में भी शूट किया और भी बहुत सारे, मतलब क्योंकि हिंदी कविता को अलीट, जो कल्चरल अलीट है, अब वो जानता है, तो दे वर मोर देन हैप्पी कि वो लोग सामने आए और करें। तो अभी तक 5-6 वीडियोस ही आए हैं छत्तीसगढ़ स्टूडियो में, लेकिन जैसे जब हमने लॉन्च किया था, किसी वजह से मीडिया को हिंदी कविता बहुत ज्यादा पसंद रही है, तो हमें पब्लिसिटी, मतलब ये लोग लिखते बहुत हैं इस बारे में, हाँ वही अगेन कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद। तो मुझे कई बार ये लगता है कि काम मैंने किया नहीं है, ये हो गया है, बिकॉज ऐसे किसी काम को करने के लिए कोई आज से 10 साल पहले कोई 50 करोड़ रुपए भी हाथ में रखता, कहता कि भाई ये हमें करना है, ऐसा कर लो, शायद डर के भाग जाता कि भाई ऐसा संभव ही नहीं। तो हमारे साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हुआ कि एक्चुअली जो आपने कहा था कि अकेला ही चला था, लेकिन एक कारवां बना। तो अगर आपके रायपुर की बात की जाए, और वैसा कई जगह रेप्लिकेट हुआ है कि जितने जो भी बुद्धिजीवी और कल्चरली अवेयर लोग परफॉर्मर्स के अलावा भी हैं, उन लोगों के साथ में एक बातचीत रेडिली संभव है। और मुझे औपचारिक बातचीत ना करनी आती है, ना कोई जरूरत पड़ती है, समझदार, मतलब जो लोग थोड़े से इवॉल्व हैं उनके बीच में, तो उनके बीच में बैठते हैं, मैं यही बोलता हूँ यार छत्तीसगढ़ी तुम लोग यहाँ पे कूल बनानी, क्योंकि रायपुर में छत्तीसगढ़ी बोलने को कोई तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ी बोल रहा है तो वो तो गाँव से आया होगा, इसलिए बोल रहा है। वहां पे जितने भी ओपन माइक्स होते हैं, बाय द वे आपके यहाँ भी ओपन माइक्स होने लगे हैं, वहां पे ओपन माइक्स होते हैं, सब अंग्रेजी में बात होती है, अंग्रेजी बोलने वाले और उस तरह के लोग करते हैं। लेकिन ये जो अंग्रेजी बोलने वाले वाला तबका है, ये हिंदी कविता का थोड़ा सा शदाई रहा। तो फिर हम लोगों ने जैसे ही छत्तीसगढ़ स्टूडियो लॉन्च किया, तो इन सब लोगों ने, सारे फोर्सेस ने अपने अपने कामों में छत्तीसगढ़ी का शुमार किया। तो अब एक छत्तीसगढ़ी में कविता लिखने वाला बंदा, जिसको हिंदी भी नहीं बोलनी आती ठीक से, जो अंग्रेजी भी नहीं आती, रायपुर में जब वो अपना जाता है, स्टेज पे बैठता है, छत्तीसगढ़ी में अपनी कविता पढ़ता है, उसका हमारे प्रोजेक्ट से या छत्तीसगढ़ी स्टूडियो से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ी में पढ़ के जाता है और गर्व के साथ में जाता है।
1: बिल्कुल। और तो मुझे, मैं वही कह रही थी कि अभी भी मुझे मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा सुनाई देती है, और लोग मतलब बिल्कुल व्हाट्सएप में मैं देखती हूँ, मैं फोन पे बात करती हूँ, तो अंग्रेजी बहुत ही कम है। और मैं तो मतलब रायपुर के पास एक बहुत छोटा सा गांव है महासमुंद, वहां से आती हूँ, वहां तो बिल्कुल हम तो छत्तीसगढ़ी सुनते बोलते ही बड़े हुए हैं। तो मुझे वही लगता है कि जो रूट्स हैं, हम किसी को बोलें कि अब तू छत्तीसगढ़ी में लिख, तो नहीं होगा। जो ऑलरेडी वहां चल रहा है, जो वहां के लोकल आर्टिस्ट हैं जो कर रहे हैं, उनको आगे लाकर और वो अपनी बात कहें, तो अपने आप मुझे लगता है फिर चीजें मेन स्ट्रीम बनने लगती है ना। तो यहाँ छत्तीसगढ़ी का कुछ सुने हम, क्योंकि ना इंसाफी होगी ना कि मैं हूँ और छत्तीसगढ़ी ना हो, तो हम कुछ सुन ले है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है।
4: अनबोलना काबर होए सैया ते मोर से, अनबोलना काबर होए सैया ते मोर से हो, मैं तो तरस तरस मर जई हो बिगर बोले से, मैं तो तरस तरस मर जई हो बिगर बोले से। नान्हेपन के रहन संगवारी खेलन एक संग में हो, नान्हेपन के रहन संगवारी खेलन एक संग में हो। अब बचपन की बात है, घानी मोनी घोर दे पानी द मोर दे, नांगर बैला जोर दे, अटकन बटकन दही चटाका, लौहा लाटा बन में कांटा, सावन में करेला फूले, चल चल बिटिया गंगा जाबू, गंगा ले गोदावरी, पाका पाका बेल खाबो, बेल के डारा टूट गे, भरे कटोरा फूट गे, आंग बांग दिया बारे, कारी गोरी हाथ पसारे, नन्हे पन के रहन संगवारी, खेलन एक संग में हो, नन्हे पन के रहन संगवारी।

0: तोला मन में गठरी माँ गठिया के राख्यो धनी तोला मन में।
1: तो मनीष, हिंदी की बात है, छत्तीसगढ़ी की बात है, पंजाबी की बात है, चीजें फैल रही हैं, भारत में इतना कुछ हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अब अमेरिका में भी, ये सिलिकॉन वैली में इतनी जो कंपनीज हैं, मैं खुद एप्पल गूगल यहाँ काम करती हूँ, तो जैसे यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होता है ना, वैसा यहाँ पे छत्तीसगढ़ी पे, पंजाबी पे, हिंदी पे इतना रिसर्च, इतना काम होता है। तो मुझे पता है कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावना है, हमें लोगों से जुड़ना है। और मुझे पता है आपको बहुत अच्छा नहीं लगता कि अपनी बात जाकर लोगों को बेचना, इज अ रॉन्ग वर्ड, बट अपनी बात से लोगों को मनाना या कुछ, पर मुझे लगता है करना पड़ता है और करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन सब जो, क्योंकि इनको भारत में बड़ा मार्केट दिखता है, तो उनका कोई भी स्वार्थ हो, हमारा स्वार्थ है हमारी भाषाओं को आगे लाना, मेन स्ट्रीम बनाना, और न केवल हमारे लोगों में, लेकिन मैं देखती हूँ कि यहाँ के जो गैर हिंदी लोग हैं वो भी इतना सुनते हैं इन सब चीजों को, तो वो हमें करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज मैं पूछ रही थी कि ये सब तो हम करेंगे ही, और अब तो इतना सारा सक्सेस है आपके पास, लेकिन कभी कहीं शुरू में कोई विरोध, किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो, ये क्या हिंदी कविता, ये कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा हुआ है?
2: अरे ये तो सभी लोगों ने कहा, मतलब ये और मुझे भी कुछ करना नहीं था। मैं ये प्रोजेक्ट बड़ा स्वार्थी प्रोजेक्ट है। दरअसल पहले दिन ही, जब पहले दिन के कुछ दिन, मतलब हम कुछ महीनों तो कोशिश करते रहे, ये प्रयोग करते रहे, किस तरह से वीडियोस बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, जो म्यूजिक क्या होगा, किस तरह से, जैसे वो आता है अपने उज्ज्वल धवल सबल का के बारे में कहा, तो क्या होना चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, किस तरह से पैकेजिंग होगी, चार पांच वीडियोस बने थे, मैंने विष्णु खरे जी को दिखाए, और तो भी उनका भी यही था कि भाई देखेगा कौन, मैंने ऐसा कोई नहीं देखेगा, बड़ा मजा आएगा, तो बोलते तुम ये क्यों कर रहे हो फिर अपने जेब से पैसे लगा के, जब कुछ होना भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास में कुछ, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है ये बात करके, उनसे पहली बार मिला एक छोटे शहर में, उनका दरवाजा खटखटाया, वो बॉम्बे में रहने वाले छोटे शहर में जाके कुछ लिखने बैठे थे, तो वो नहीं चाहते थे कोई आए, तो बड़े देर, एक दूसरी बार खटखटाना पड़ा, पहली बार कोई आवाज नहीं आई, तो लगा कि कोई आ रहा है, बड़ी उसकी परेशानी हो रही होगी क्योंकि चप्पल के घिसकने की आवाज आ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगा कि हे भगवान मैंने इनको परेशान कर दिया, कौन है क्या है, सर मैं आपसे मिलने आया था, किस लिए, सिर्फ बात करने आया था, तब तो ये प्रोजेक्ट का ये भी नहीं मालूम था कि इनके साथ बनाना भी है, कुछ और करना है। तो मैंने कहा सर आप शायद बिजी हैं, बोलते हाँ, तो मैंने ठीक है आप बैठिए, मैं फिर कभी आप कहेंगे तो आ जाऊंगा, या फिर सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं जाने लगा। बोले ठीक है, अब तुम कहाँ के हो, यहाँ के नहीं लगते। मैंने कहा जी मैं बॉम्बे में हूँ अभी। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब तुम आए हो तो 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैं 5 मिनट के लिए मैं उनसे क्या बात करता, मैंने कहा मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद में उसी दिन 4 घंटे हो चुके थे उनसे बातचीत करते हुए, फिर मैंने पूछा कि सर शराब पियेंगे, मतलब हिंदुस्तान था, मुझे अंदाज था कि वो अकेले रहते हैं, तो मैंने, मेरा ये था कि मैं जाऊँ कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर दूँ ताकि हम लोग आराम से बैठ सकें। तो फिर भी उन्होंने फिर सोचा, 4 घंटे से बातें कर रहे हैं और मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी बातें इतनी मजेदार हो रही हैं कि भाई किसर, मतलब मृत्यु आप किस तरह से देख रहे हैं, कितने दिन बचे हैं, और दरअसल उन्होंने कहा था 5 साल बचे हैं तकरीबन, तो 5 साल बाद वो चले भी गए, और तो फिर कैसे आप देखते हो, लाइक हाउ डू यू बिकम फ्रेंड्स विद इट, इट वॉज नॉट अ सैड टॉपिक। और लगा कि यार इस इंसान को, उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन किए थे हिंदी में, और हिंदी के उधर उन्होंने, वो अंग्रेजी मेरी सुधारते रहे, वो उर्दू मेरी सुधारते रहे, वो हिंदी मेरी सुधारते रहे, वो मुहावरे मेरे सुधारते रहे। तो मुझे लगा मतलब इन मिड 40s मैं तो बड़े बड़े काम करके आया था, रॉबर्ट डिनीरो की बेटी ने मूवी मेरी प्रोड्यूस की है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, दुनिया भर में घूमा हूँ, नाइट क्लब चलाए हैं मायामी में से लेके पता नहीं क्या क्या, अब आपको वहां पे बच्चे जैसा महसूस हुआ, अब पता नहीं आप इसको कितना वो कर पाएंगे, तो जब आपको बच्चे जैसा महसूस हो रहा है, एंड यू कैन स्पीक एनीथिंग, और सामने वाला आपके कान पकड़ सकता है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। वरना मुझे लगता था कहीं पे भी बैठता था कि मैं ही समझदार हूँ बस, और कोई है नहीं। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ इन लोगों के साथ में बातचीत करने का, और बहुत इंटीमेट बातचीत करने का, शायद इन लोगों के दरवाजे पे बहुत ज्यादा लोग जाते नहीं थे उस वक्त। दिस हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर मी पर्सनली। हमारे हिंदुस्तान के फाइनेस्ट, अब जैसे बिरजू महाराज हैं, उनके घर गए तो आप पराठे बना सकते हो, वो बच्चे हैं, वो बिल्कुल बच्चे हैं, आप बच्चों से बात करते हैं, गा दूं सुना दूं ये कर दूं वो कर दूं। अब बिरजू महाराज बिल्कुल बच्चे हैं, और ताउम्र इतने खुशकिस्मत है कि ताउम्र बच्चे ही रहे, और वो चलते नहीं बनेगा लेकिन वो डांस करना चाहते हैं, उनकी आंखें हमेशा ही डांस करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हमने हमने रीति काल पे ज्यादा काम नहीं किया, इतनी सारी एक्ट्रेसेस ने ऑडिशंस दिए कि रीति काल में ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मैंने कहा तुम लोग सारी एक्ट्रेसेस फाइनेस्ट इवन, मतलब बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस भी आती हैं, एनएसडी से अभी निकल के आई हैं, ताजी ताजी हैं, उनको जबान भी उनकी भोजपुरी भी है उनकी जबान पे और सब कुछ अच्छे से कर देती, लेकिन वो रीति काल पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिरजू महाराज की आंखों में जो शरारत है
1: जी,
2: जो खेल है कि अब वो एक गोपी ने कैसे कृष्ण को देखा और कृष्ण ने कैसे उसको देखा और वो सब बातें वो और कोई नहीं कर पाता है, तो
1: श्रृंगार रस तो बस बिरजू महाराज की आंखों में।
2: हाँ, और फिर उसके अलावा वासिफुद्दीन डागर हुए, गुंदेचा बंधु हुए, कोमकली हैं, अब रवीश कुमार हैं, विनोद दुआ हैं, तो आप उनके साथ में बैठ के देश को समझने का, वो उसकी पल्स को समझने का, कविता तो वो पढ़ देते हैं कि चलो देश कागज पे बैठा नक्शा नहीं होता, फिर लेकिन आप बात करते हैं उनसे कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, इस देश का हश्र क्या होने वाला है, इस देश में क्या भला होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, देश का, भगवान का, धर्म का, फलसफे का, मृत्यु के ऊपर, इतने सारे लोगों से इतनी अच्छी बात करने का मौका मिला, वो खुशकिस्मती रही मेरी।
1: तो मनीष, इतना बड़ा नाम कि सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे बड़ा कल्चरल मूवमेंट और लिटरेरी प्रोजेक्ट और इतने सारे नाम, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, इतने लोग जुड़ रहे हैं, अब आगे क्या? मतलब आपने तो शुरू किया एक छोटी सी अपनी इच्छा के साथ, सपने के साथ, आपको कुछ नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, और इतना सारा कुछ हो गया लेकिन फिर भी बहुत सारा करना बाकी है, तो क्या देखते हैं आप, कैसे सोचते हैं, क्या विजन है, कैसे लोग जुड़े, कैसे और आगे बढ़ेंगे आप?
2: ये तो जैसे एक शौकिया प्रोजेक्ट रहा कि भाई फोर्सेस सारी की सारी आगे आए और हर तरह के लोग इसमें काम करना शुरू करें, तब जाके कहीं देश में भाषा की स्थिति बदले। अब लेकिन ये है कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में है जो बन गया होते होते हो गया, और अब जाके समझ में आया कि संभावनाएं कहाँ हैं। जैसे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं ताकि वो किसी भी भाषा के बच्चे हों, भले ही पहले दिन से अंग्रेजी पढ़ें, लेकिन हम उन्हें उनकी मातृभाषाओं की तरफ खींच सकें। आप बुजुर्गों के लिए तो जो प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं वो बड़े आसानी से बन जाते हैं, बच्चों के लिए आपको कलर्स चाहिए, फिर एनिमेशन चाहिए, फिर ये चाहिए, वो चाहिए, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू आगे मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने खुद नहीं किया, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे लोगों को बता दें। अब एक और चीज आ रही है सहन में कि अब चूंकि प्रोजेक्ट बड़ा हो गया है, सो आई शुड बी लेस सेल्फिश एंड प्रॉबली थिंक अबाउट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इट। तो उस बारे में भी अब मैं यूएस में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बिकॉज एक ये बुरी लग सकती बात लेकिन वो है कि भाई मुझे इंडिया का पैसा उतना क्लीन नहीं लगता, इट कम्स विद लॉट ऑफ कंडीशंस, सरकार का है तो उसकी अलग मोरल वैल्यूज हैं कि भाई कोई भी खड़ा हो जाएगा कहेगा कि भाई आप ये भारत माँ के लिए कुछ कर दिया, अपने राम को के बारे में ऐसा कह दिया, लोग ऐसे निकाल सकते हैं। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में वही दकियन उसी काम रखें, तो जो कॉरपोरेट्स हैं जो इंडिया में हैं उनमें मेरी कम दिलचस्पी है, लेकिन एक अच्छा मैसिव प्रोजेक्ट किया जाए जो सारी भाषाओं को का शुमार हो, कविता के अलावा नाटक, नाटकों के लिए, कहानियों के लिए, या तो अलग प्रोजेक्ट्स हों या इसी में मिला के किए जाएं, और साथ में हम लोग जो शुरू तो हुए सिर्फ साहित्य के साथ में, लेकिन प्रेजेंटेशन की बात होते होते हर तरह का इसमें संगीत है, इसमें इसमें लोक संगीत है, इसमें शास्त्रीयता है, इसमें सुगम संगीत है, इसमें ठुमरियां और उस तरह का भी संगीत आया, और प्रेजेंटेशन के कई दूसरे आयाम भी खुले। तो अब काम करने की बहुत जगह है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हालांकि मुझे श्रेय मिल जाता है कि भाई तुमने किया है, लेकिन सारे देश के जो फाइनेस्ट जहन है वो साथ में रहे। मैंने कहा कि भाई मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, अगर हम कहीं गलत दिशा में जाते हुए दिखें, तो ऐसा अधिकार बहुत सारे लोगों के पास में रहा कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। हमने भले कितने भी मेहनत से बनाया हो कुछ भी है, तो अगर किसी का फोन आता था मैं पहले तो डिलीट कर देता था और पूछता था कि अगर आप बताना चाहें तो बता भी देंगे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं तो कुछ होगा ही, तो फिर कभी बताते भी थे। तो एक एडिटिंग जरूरी है। मतलब एक सवाल एक वीडियो में हमारे ये भी था कि भाई मिर्जा गालिब इतने बड़े कवि कैसे हो गए, तो उसके जवाब में जो आया था इट वॉज द सेम कि वो तो मस्ती करते थे, शराब पीते थे, दिन भर मजाक करते रहते थे, मजाक में भी बहुत कुछ कलाम कहते थे, संजीदा कलाम भी कहते थे, तो उनका जो अच्छा काम था वो रखा गया और बाकी सारा का सारा हटा दिया गया। तो उस कवि के नाम पे आज जो मिलता है इट्स ग्रेट समथिंग। तो ये ऐसा हिंदी कविता के साथ बहुत सारे लोगों ने कहा किया। अब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, सो ये इस वो अब नो हाउ है। आई विश कि उस नो हाउ का कोई इस्तेमाल हो, सारी भाषाओं के लिए हो, सारी कम से कम भारतीय भाषाओं के लिए तो हो ही, अगर दुनिया की वैश्विक भी हो सकता है, और सारी भारतीय भाषाओं के लिए हो सकता है, साउथ एशियन सारी भाषाओं के लिए हो सकता है, कि किस तरह से सभी को इन्वॉल्व करके सभी के लिए सभी के द्वारा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए।
1: और मनीष इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और इतनी सारी चीजें हैं और आपका ये सपना, आपकी ये लगन, ये पैशन और ये सब सेल्फलेसली ये करते जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि इतना सब करने के बावजूद भी आप बिल्कुल वही मनीष हैं जो मैं पहले नहीं जानती थी, पर ऐसे ही रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बस आप ऐसे ही रहें, और आपसे मैं जो पिछले कई दिनों से बातें कर रही हूँ तो मुझे हमेशा लगा कि इस चकाचौंध में जो आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखी होगी या इस कविता के जो प्रोजेक्ट में आपको इतनी सक्सेस मिली है उसमें भी कहीं आपने खुद को खोया नहीं है, आप वही हैं जो हैं। तो बस यही बने रहिए, और आप अगर कभी सोचें कि मैं वो नहीं हूं तो कोई आपको, आपने कहा ना, कान पकड़ने वाला मिल जाए और आपको हमेशा सही जगह दिखाए, और आपके जो इतने सारे सपने हैं वो आप लोगों की आंखों से देख सकें, लोग आपके साथ जुड़ सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, यही आपको मैं विश दूंगी, यही दुआ करूंगी और उम्मीद करूंगी कि बस जैसे ये फल फूल रहा है कविता, हिंदी कविता का प्रोजेक्ट, वो बस उसमें और फल लगे, फूल लगे और भाषाएं जुड़े और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं।
2: और हिंदी कविता उर्दू स्टूडियो, छत्तीसगढ़ स्टूडियो, पंजाबी स्टूडियो, ये चार नाम हैं, इनके नाम से यूट्यूब चैनल्स हैं। इससे आप भी, आपके श्रोता भी और भी देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, फिर से एक बार तहे दिल से आपका शुक्रिया, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और मैं चाहती हूँ कि बस हम ऐसे ही जुड़े रहें, साथ काम करें और लोग जुड़ते जाएं और ये बड़ा और बड़ा होता जाए प्रोजेक्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, शुक्रिया।
3: KZSU Stanford, KZSU Stanford. It's 4 o'clock.